ज्ञान त्यान किच कर्म न जाना, सार न जाना तेरी। सब ते वड्डा सतगुर नानक, जिन कल राखी मेरी। ज्ञान ध्यान किच कर

जियड़ा अग्न बराबर तपै पीतर वगै काती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती परनवत नानक हुकम पछाड़ै सुख होवै दिन राती खम अवगुण भरे एक गुण नाही

सतगुरु तेनू छड़ के नहीं, ते सतगुरु ने बचन किया बुढ़िया जा मैं तेरे नाल अज बचन करना वा, तेरे तो ओले कदे ना होसा, मैं किसे भी रूह विच होवांगा पर तेनू पता होवेगा मैं किथे टिकिया होया वा। पंक्ति बड़ी रमज भरपूर है, तेरे तो बुढ़िया ओले कदे ना होसा। बाबा बुढ़ा जी नमस्कार करके पिछा आ गए, ते जिदन भाई लैणे नू गुरगद्दी दिती, लैणे तो गुरु अंगद बने, पहली नमस्कार गुरु नानक साहब ने की। उस वक्त माता सुलखनी भी कोल आई, उन्हें एक शब्द कहा सी, दाता लै गद्दी तां सेवक नू मिल गई पर पुत्रां दा की बनेगा, इन्हां दा प्रसाद पानी। ते गुरु साहब ने जिहड़े बचन कह कवि संतोख सिंह ने गुर प्रताप नानक प्रकाश भी दिते ने, कह लगे सुलखनीए आ गुरु दा दर ऐसे ही, एदे दर ते बैठे हुए कुत्तियां दे पैरां विच भी करामातां होणगियां, ए ते मेरे पुत्र ने इन्हां दी क्यों नहीं लोग सुनगे। उत्थे इक शब्द क्या, कहन लगे ए बाबे के होणगे, बाबा श्री चंद ते लखमी दास ए बाबे के होणगे, ते जोत जिहड़ी है गुरु अंगद साहब दे कोल होवेगी। उत्थे शब्द कह गुरु घर के जे होए सवाना, जिहड़े गुरु दर दे कूकर होणगे तिनको पूजा सगल जहाना, लोग उन्हां दी पूजा करनगे। अज गुरु नानक साहब जी तो जदों जोत भाई लैणे विच टिकन लगी, ते विच विचोला कौन बन गया, बाबा बुढ़ा जी। पहला तिलक गुरियाई दा भाई लैणा जिन्हों बाबा बुढ़ा जी ने लाया, गुरु नानक साहब नूं नमस्कार कीती बाबा बुढ़ा जी ने, फिर साहब ने कहा बुढ़िया मैनू हुण छड के तू नमस्कार गुरु अंगद साहब दे चरणां विच कर। बाबा बुढ़ा जी ने गुरु नानक साहब तो बाद मत्था टेकिया। भाई लैणा जी नूं गुरु अंगद साहब नूं हुक्म हो गया, क्योंकि गुरु इतिहास नाल तुरेगा बाबे बुढ़े दे, बाबे बुढ़े दे जीवन नूं नाल तुरन लई गुरु इतिहास वाचना पएगा। कहन लगे भाई लैणे नूं गुरु अंगद साहब नूं, तुसीं हुण करतारपुर टिकना नहीं, तुसीं खडूर चले जाओ। बाबा बुढ़ा जी पिछे करतारपुर टिके। गुरु नानक साहब तो बाद गुरु अंगद साहब जी खडूर आए, इत्थे माता विराई दे घर दे अंदर आ के टिके। इस माई दा पेका पिंड सी मत्ते दी सरां, मत्ते दी सरां दा हाकम सी जिहड़ा चौधरी सी, उहदा नां सी तख्त मल, इहदी धी सी। माता विराई दा असली नाम सी वीरां बाई, इहदे सत भरा सन, ते लोकी आम तौर ते इहनूं सत भराई भी कहिंदे हुंदे सन। इस माता विराई दा आनंद कारज खडूर दे जिमीदार नाल होया, चौधरी नाल होया। माता भराई ने गुरु अंगद साहब दे पिता बाबा फेरू मल नूं सक्का भरा बनाया सी, ते गुरु अंगद साहब माता विराई दे घर आ के ना पहला गुरु नानक साहब दे दर्शन भी कीते सन। अज जदों गुरगद्दी जोत मिली, माता विराई दे घर आए, जिहड़ी रिश्तेदारी करके भैण भी बन गई, वैसे भुआ लगदी सी, पर वीर शब्द इन्ने गुरु अंगद साहब लई भी वरत्या। पर जिदन गुरु जोत मिल गई, उदन वीर नहीं, उदन गुरु नानक जाने। अंदर गुरु अंगद साहब टिक गए, प्रेम दा विछोड़े दा सल सी। बाहरों सारे इतिहासकार सहमत ने कि माता विराई ने दरवाजा ला दिता, अगों दरवाजा चिण दिता, ते इतिहासकार कहिंदे ने संगत बेबल हो गई। जेड़े नाम ते पुजारी ने गुरु नानक साहब दिसे नहीं, एक एक तो पुछदे ने गुरु अंगद साहब कोल गुरु जोत है, पर गुरु अंगद साहब हैन किथे। माता विराई नूं कहा तू दसना नहीं किसे नूं, गुप्त वास हो गए। सिख संगतां थां थां ते गईयां। भाई अजिता रंधावा इहदे मन विच वी बड़ा चाओ गुरु कित्थों प्रगट होवे। जदों संगत नूं गुरु ना लभिया, उस वक्त एक ने क्या कहन लगे भलियो भटको ना, चले दो बाबे बुढ़े दे कोल रमदास, ओनू गुरु नानक इक बचन दे के गए बुढ़िया तेरे तो ओले कदे ना होसा। केवल बाबे बुढ़े नू पता है गुरु नानक दी जोत किथे टिकी हुई। शब्द बड़ी प्यारी पंक्ति सी, तेरे तो ओले कदे ना होसा। संगत पहुंची रमदास, बाबा बुढ़ा जी खेतां विच काम पे करदे ने, जाके कहन लगे महापुरशा विछड़िया नू मिलाण वालिया, अज संगत तेरे घर विच आई है। संगत दियां अखां विच नीर सी, पुछया दसो साध संगत इस किरमली की हुक्म है। कहन लगे बाबा तैनू गुरु नानक साहब एक बख्शिश दे के गए ने, तेरे तो ओले कदे ना होसा।
एक कृपा कर इस बिछड़ी हुई संगत नू गुरु तक मिला दे, इस संगत नू गुरु तक ले जा। बाबे बुढ़े ने रबाबी नाल ले ले, संगत नाल ले ली। बाबा बुढ़ा रमदास तो तुरिया है, संगत दा इकट्ठ नाल सीधा खडूर आके पहुंचया है। ते पहुंचया भी माता विराई दे घरे जिथे गुरु अंगद साहब टिके हुए थे। आके कहन लगे, मां नमस्कार कीती माता विराई ने, देखिया बाबा बुढ़ा आ गया, बड़ा अदब कीता। कहन लगे, माई तेरे घर गुरु टिके है। माता विराई दे शब्द संग भाई वीर सिंह लिखते ने, कहन लगी तुहानू किने दस्या मेरे घर गुरु वे। ते बाबा बुढ़ा मुस्कुरा के कहन लगे, माई तेरे चेहरे का नूर दसदा पै के तेरे घर विच गुरु वे, तेरे चेहरे की रौनक दसदी है तेरे घर गुरु वे। क्योंकि जितना मर्जी तू लका लै, क्योंकि नाम का रंग बोल के कहिंदा तेरे घर दीन दुनिया का खजाना है। कहन लगी, बाबा तू सब कुछ समझना है, पर मैनू अपने गुरु के हुक्म विच पाबंद रहन दे, मैनू हुक्म नहीं मैं जबान खोला। बाबे बुढ़े ने पहली जुग दसी। कहन लगे, सिखो गुरु प्रगट करना जे? कहन लगे, हां। ते रबाबियां नू क्या रबाब छेड़ो ते बाणी पढ़ो गुरु नानक दी। कभी सवाल ही नहीं पैदा हुंदा कि गुरु नानक दी बाणी सुन के गुरु अंगद पातशाह बाहर ना आवे। बाणी दा अदब कितना, गुरु दी बाणी सुन के गुरु अंगद जरूर बाहर आवेगा। जदों रबाबियां ने शब्द छेड़िया, मैं मन जालन राम की तेरा नाम वखर व्यापार जियो, जदों प्रेम नाल भिजे शब्द निकले ते उस वक्त किन ने किवाड़ खुलिया, गुरु अंगद साहब बाहर आ गए। ते बाबे बुढ़े ने उच्ची आवाज किया, संगते गुरु नू जदों भी प्रगट करने बाणी दा आसरा लई, क्योंकि बाणी दे विच ही गुरु प्रगट हुंदा। रमजा पांदे पैसन के आने वाले समय विच ए करना, जदों गुरु अंगद साहब बाहर आए ते बाबा बुढ़ा जी ने नमस्कार पहली कीती। कहन लगा, बाबा सतगुरु इस संगत विछड़ी नू अपने नाल जोड़, क्यों तुसी अंदर टिक गए हो, इस संगत नू कौन सांभेगा। कमाल दी गल, मेरे गुरु अंगद साहब दे नेत्रां विच नीर सी ते मुख विचों जिहड़ा पहला शलोक निकलिया ते गुरु ग्रंथ साहब दी श्री राग की वार विच गुरु अंगद साहब दा पहला ही शलोक है। पुछया, सतगुरु अंदर क्यों टिके हैं? ते नेत्रां विच नीर भर के क्या, बुढ़िया जिस प्यारे सिहोने हो तिस आगै मर चलिया, त्रिग जीवन संसार ताक है पाछे जीवना। पर क्या सतगुरु इनू तेरे तो बिना आसरा नहीं संगत नू। बाबे बुढ़े ने विछड़ी हुई संगत नू गुरु नल मिला दिता ते फिर हाथ जोड़ के क्या, सतगुरु अपने इस बच्चे नू कोई हुक्म दो, मेरे प्रति की हुक्म है। ते सतगुरु गुरु अंगद साहब ने शब्द कहे सन, कहन लगे, बाबा तिनको क्या उपदेशिया जिन गुरु नानक देव, किन्नी कु किरपा होगी होवेगी। गुरु अंगद साहब ने कहा, की उपदेश करा तेनू जिनू गुरु नानक किरपा देगी। गुरु अंगद साहब दा समा लंघिया ते बाबा बुढ़ा खडूर टेक गया। बाबे बुढ़े नू सेवा दिती गई गुरु की लंगर विच माता खीरी दे नाल। बाबे बुढ़े ने रज के भांडे मांजे, रज के तप्पड़ झाड़े, गुरु अंगद साहब दे चरण

अमरदास गोइंदवाल आ गए ते बाबा बुढ़ा खडूर तो गुरु जोत नाल गोइंदवाल आ गए। गोइंदवाल जिदन उच्ची जात वालिया ने पानी ना भरन दिता, सिखा दे घड़े भन दिते, मशकां नू तीर मार के पाड़िया, ते उस वक्त सवाल उठिया पानी कित्थों लैणा, ते बापू गुरु अमरदास ने कहा बौली विचों, ते साध संगत सवाल उठिया बौली दा टक कौन लाएगा। बाबा बुढ़ा भांडे पिया मांजदा सी ते गुरु अमरदास ने बांह पकड़ के कहा, कह लगे गुरु नानक दे प्यारिया आ जुगो जुग अटल बौली रहनी है, ते इस बौली नू टप मैं तेरे हथा न लवाना। गोइंदवाल दी बौली दा टक बाबा बुढ़ा जी ने लाया, सेवा करदे रहे। इथों तक विद्वाना ने खोज कर दिती जेड़ियां 22 मंजियां थापियां गुरु अमरदास जी ने, बाबे बुढ़े नू कोई मंजी नहीं दिती, पर भाई वीर सिंह लिखदे ने 22 मंजियां दे प्रचारक हर 6 महीनिया बाद बाबे बुढ़े नू आके रिपोर्ट देंदे सन कि असी केड़ी केड़ी थां ते प्रचार करके आए हां, केड़ी केड़ी थां ते असी गुरमत दा फैलाओ कीता। बाबे बुढ़े दे अधीन उहदे प्रबंध हेठ 22 मंजियां ने साध संगत बाबा बुढ़ा जी ने रज के गोइंदवाल सेवा कीती, ते अज भाई जेठा जिदे सिर तो मां बाप दा साया उठ चुका सी, टोकरी चुक के मिट्टी भी हुंदा पिया, ते उस वक्त बाबा अमरदास पुछदे ने बुढ़िया गुरगद्दी किनू देनी है। उत्तर सी दाता जिवें तैनू पौंदा है। उस वक्त बाबे बुढ़े ने भाई जेठा जी दे सिर तो टोकरी उतारी, गुरु रामदास जी दे शीश तो बौली विच ले जा के इशनान कराया, अपने हथां नाल दस्तार सजा कपड़े पवाए, ते बाबे बुढ़े ने लिया तख्त ते बिठाया, ते गुरु अमरदास जी मत्था टेकन लगे, ते गुरियाई दा तिलक फिर बाबा बुढ़ा जी ने दिता। अज गुरु अमरदास तो जोत गुरु रामदास अंदर प्रवेश कर गई। साध संगत समा आ गया गुरु रामदास जी दा, अमृत सरोवर दा टक लगे, ते इथों तक सिख विद्वान कहिंदे ने अमृतसर दी धरती वेखण वास्ते जिथे नगर वसदा गुरु अमरदास जी ने भाई जेठे दे नाल बाबे बुढ़े नूं भेजिया सी। बाबा बुढ़ा जी खुद गए, जमीन तकी, जमीन खरीदी, ते जितन अमृत सरोवर दा टक लगन लगा है, ते उस वक्त मेरे गुरु रामदास ने फिर बाबे बुढ़े नूं अगे कर दिता। बाबा बुढ़ा जी ने वो टक लाया, उस वक्त आप सेवा भी करते रहे। जदों तिरथिए ने रौला पाया, आपां इतिहास भी सुनिया भी शाम की कथा विच चिट्ठियां लकाउंदा रहा, ते गुरु रामदास गुरगद्दी देन लगे, ते पुछदे पए ने बाबा बुढ़ा गुरगद्दी किनू दईए, तेरी नजर विच कौन परवाह ने। ते बाबे बुढ़े ने हाथ जोड़ के कहा सी, सतगुरु अर्जन ही गुरगद्दी दे लायक ने, ते लाहौर तो लैण वास्ते भी बाबा बुढ़ा जी गए लैके आए। गुरगद्दी दा तिलक गुरु रामदास जी तो बाद गुरु अर्जन साहब नूं दिता। समा आ गया गुरु वाहिगुरु गुरु अर्जन साहब दा समा आया, तिरथिए ने लंगर दी नाकाबंदी कर दिती। इथों तक दिन देखने पए, गुरु अर्जन साहब रात नूं भुखे भी सौंदे रहे। बाबा बुढ़ा आया बीड़ साहब तो, ए चौधरी लगा ने दिती सी एक बीड़ दा टुकड़ा गुरु के पशुआं लई। बाबा बुढ़ा जी बीड़ विच रहिंदे ने, आए भाई गुरदास आया, देखिया लंगर दी हालत बड़ी पतली है, ते पुछिया सी, कहन लगे की कारण बीबी भानी नूं के गुरु घर विच तां मैं ओ समा देखिया है रस अमृत खीर क्याली, पर अज की बन गया गुरु का लंगर मस्ताना। ते उस वक्त बीबी भानी ने कहा सी, गुरु के सवारिया लंगर दी नाकाबंदी कर दिती तिरतीए ने, रस्ता अपने कर ले जांदा है, लंगर छकन लई संगत इधर भेजदा है। बाबे ने डांग चुकी, ते जिथे पुतली घर अमृतसर उथे बाबे बुढ़े ने नाका ला लिया, ते भरी हुई संगत जदो आउणी, इन्ना विश्वास सी संगत नूं बाबे बुढ़े ते, ए कहना तिरतीआ झूठ बोलदा जे गुरु अर्जन साहब गुरु ने, तुसी जे नमस्कार करनी है ते गुरु अर्जन साहब दे कर जाया। बाबा बुढ़ा जी उन्हां ने आप परत के लंगर बहाल कीता। साध संगत अज समा आ गया, बाबा बुढ़ा जी फिर बीड़ साहब चले गए, सतगुरु के दर्शन कर जाने, उत्थे सारा दिन भजन बंदगी करनी, वाही करनी, पशु चारने, ते पशु गुरु के हुंदे सन। बाबा बुढ़ा जी बीड़ साहब ने माता गंगा जी ने गुरु अर्जन साहब नू नमस्कार करके क्या दाता सब नू दाता

ओहम पातिक बिना सह गुर अमरदास परसी है सिद्ध साधक आशा सह गुर अमरदास परसी है ध्यान लइए पौ मुक है गुर अमरदास परसी है अपौ लभै गौ चुकै एक बिन दुगण जो तो रह जा सुमंत्र मानवैल है जाल पाप दार्थ इतड़े गुर अमरदास डिठ मिले कन हर बूंद बसोरू मावल कुसुम बसंत गणंत नयावै रव सस किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावै रुद्र त्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन पल उन्हें सो गावै

जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की, हर नाखश फारे कर आज। फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी, छीनत वस्त्र दीन बहु साज।

चित्त शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसारे खोवे गुर नवनिद दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो तल गुर सेविए एहन सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु कै

0: शक्ति दे, समर्था दे, ताकि मौत नू खिड़े मत्थे कबूल कर सकीए, ताकि कौम दी जिंदगी उजागर कर सकीए, महान कर सकीए, उच्ची कर सकीए। इतने शब्द इस वक्त प्रवान करने, बाकी सवेरे 7:30 तो लैके 8:30 बजे तक शब्द की कथा आप जी के समक्ष जो है करांगे। 3-4 महीने को लगातार मैं सफर दे चुके रहा, थोड़ा जहा कोई शरीर भी
1: सूचना सुनते जानी, एक जरूरी सूचना सुनते जानी,
0: शरीर भी थोड़ा जहा ढिला चल रहा है, इस वास्ते थोड़ा जहा समा मैं सवेरे लावांगा, घंटा पौना घंटा शब्द के विचार 7:30 तो लैके 8:30 बजे तक। ते दूसरी अर्ज ए है कि सरदार खुशवंत सिंह जी ने सुप्रीम कोर्ट दे जो अच्छा जी, सो खैर जिहड़े हालात ने वो आप नूं सरदार इकबाल सिंह जी जो है दस देणगे। बाकी प्रोग्राम सवेरे दा इत्थे जो है सजेगा, ते दस सवेरे 7:30 बजे तो लैके 8:30 बजे तक शब्द दी जो मुखवाक दरबार साहब आउंदा है ओदी कथा इत्थे सवेरे होवेगी। उस तों पहले आसा दीवार दा कीर्तन होवेगा। आप इसे तरीके नाल होम मा के इत्थे पूजन दी कृपालता करनी। बुल चुक दी खिमा, वाहेगुरु जी का खालसा,
2: वाहेगुरु जी का। मुख पंक्ति जो आई है इत्थे तक दास नूं सुनाई दित्ती है, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। मन दे ते तन दे गुरु दी प्रीत उपजी है, जो मन नूं मोहन वाला है, जो अमुलक है। दरअसल मन दे ते जो सब तों पवित्र और आनंदमय प्रभाव पैंदा है वो है गुरु दा। उनसे मनुख दे मन दी बनतरी जानदी है कि प्रभाव इस जैसे हर चीज दा पैंदा है, हर वस्तु दा पैंदा है, हर माहौल दा पैंदा है। जिस घर विच कोई मौत हो गई है, मर्ग हो गया, मनुख उत्थे बैठे मन प्रभावित होंदा है अपने ढंग नाल। जिस घर विच शहनाइयां वज रही ने, मंगल दुनिया वज रही ने, गीत खुशी दे गाए जा रहे ने, मन प्रभावित होंदा है। किधरे निरप हो रहे है, आम टेंशन संगीत दियां धुना अलापियां जा रही ने, मन प्रभावित होंदा है। तरह तरह के पदार्थ ते रस इस तों मन प्रभावित होंदा है। लेकिन कहिंदे ने इह प्रभाव वक्ती होंदा है, आरजी होंदा है, दायमी सदीवी। अगर प्रभाव पैंदा है तां उह गुरु दा पैंदा है, पर इह उदों पैंदा है जद मन गुरु दे निकट होवे। पदार्थ दे निकट सुते सिद्ध मन हो जांदा है, गुरु दे निकट नहीं होंदा। इस वास्ते कीर्तन ते कथा रोज दा सत्संग मैज इस वास्ते है कि मन सहजे सहजे गुरु दे निकट आवे। शरीर करके कई दफा असी हाजिरी भर लैंदे हां, पर मन करके गुरु की हजूरी चले जाना बड़ी कठिन गल है। इस वास्ते दो शब्द ने, हाजिरी भरनी होर गल है, तो गुरु की हजूरी चले जाना होर गल है। हाजिरी शरीर ने भरनी है, तो हजूरी साडे मन ने जाना है। अगर मन हजूरी नहीं गया तो कलगी अगर पातशाह की रचना तो निकल गया कि हाजिर वैराजर वैराजर हाजिर। तन करके मौजूद से मन नेड़े नहीं आ सकया, तो अज तुसी मन बहुत नेड़े लेने ने, इनू समझाना है। दरअसल धर्म की सारी शिक्षा दीक्षा मन नूं समझाण लई है। गुरु दे नेड़े आज स्वास्थ्य भी लेना है, तो अज साडी गुरमर्यादा संकट विच है। भगत नामदेव जी महाराज का एक वाक है कि साहिब संकट वे सेवक भजे, चिरम काल में जीवे दो कुल लजे। साहिब मालिक गुरु अगर संकट विच है, तो जिहड़ा सेवक है वह आप हुण भजिए नसीए, गुरु ही साडा संकट विच है, तो असीं साथ रहि के की करना है। प्रार्थना करनी, जद जद भी गुरु संकट आया, बथेरिया ने बदावे लिखे हैं,

तो वो लीला पुरुषोत्तम की लहर भी ठंडी पै गई, महात्मा बुद्ध की लहर भी मिट गई। उदे मिटन दे होर कारणां विचों एक ए भी कारण सी कि उस लहर की हिफाजत करने लई बोधियां कोल कुछ भी नहीं सी। तलवार दे धनिया ने शस्त्रां दे धरनिया ने भी उन्हां नूं मारिया ते उन्हां दे अपने डिंब ते पखंड ने भी मारिया, लहर मठी पै गई। योगियां दी लहर चली, बड़े वड्डे पद्धर ते चली, राजे महाराजे भी लपेट दे चाहे, आम प्रजा भी लपेट दे चाहे, लेकिन यह भी ठंडी पै गई क्योंकि बंदे नूं निरी सिद्धि नहीं चलती। बंदे नूं चाहिए परमात्मा की सिफ तो सलाह ते परम आनंद समाधि। सिर्फ उम्र लंबी कर लेना यह कोई मायने नहीं रखता, ते करामात है कि महाराज कहने साह सिद्ध सा करामात है, अचिंत करे जिस दात, अचनचेत उजड़ियां दातां दे रहा है, बस एक करामात है। और की चाहिए, पवन वग रही है, सूरज की रोशनी पे मिलती है, वगदे हुए दरियावां चो जल पिया मिलता है, रिजिक पिया मिलता है, करामात नहीं ते और की। तेनू बच्चे मिल गए, पत्नी मिल गई, पति मिल गया, भरा मिल गए, संबंधी मिल गए, दातां, ये करामात नहीं ते और की। और तेनू केड़ी करामात चाहिए, एक एक चीज इतने करामात है, एक एक दात दा इतने कोई जो है मुल नहीं। सा सिद्ध सा करामात है, अचिंत करे जिस दा। जिहड़ी वस्तु वो दाता अचनचेत झोली च पा देवे, बस एक करामात है, और कोई करामात नहीं। मुख्तसर अर्ज करा लमकावां। योगियां दी लहर ठंडी पै गई, इन्हां करामातां विच पहले लोकी फसे रहे, पर देखिया करते तो दूर आ कृत नाल जुड़ गए, पदार्थ नाल जुड़ गए परमात्मा ते दूर, पदार्थां दे सुखां नाल जुड़ गए समाधि दा परम आनंद ते दूर। योग मत दी लहर भी ठंडी पै गई इस देश दे च। भगती दी लहर चली ते इस लहर दे बानी सन भगत कबीर और महाराष्ट्र दे सन संत तुकाराम नामदेव। पूर्वी भारत दे च कबीर ने बेड़ा चुकिया, दक्षिण भारत दे च नामदेव ने भारत दे कोने कोने विच भगत पैदा होए। भगतां दी बकायदा एक लहर चली। इस लहर दी लपेट दे च करीबन करीबन अद्धी तो ज्यादा दुनिया इस देश दी आ गई। लोगों का भगती भाव विच विश्वास हो गया, छड़ो योगियां दे कर्म कांड, छड़ो महात्मा बुद्ध की साधना, छड़ो ओ लीला पुरशोत्तम की रास लीला, छड़ो श्री राम की ओ कोरी मर्यादा जिहदे च दुख ही दुख है। भगती भावना नाल भगती करो, गीत गाओ। पर मैं अर्ज करा यह लहर भी ठंडी पई। इस दे ठंडे होने दे दो कारण, एक ते भगती दी लहर दे 99 फीसदी वह भगत है जिन्हां नूं इस देश का ब्राह्मणी समाज ते ब्राह्मणा दे दित्ते हुए संस्कार शूद्र कहिंदे सन। तो स्वर्ण जाति दे जिहड़े लोग सन उच्चे, वह इन्हां दे कदमां दे बैठण तो इनकारी हो गए। इस वास्ते जितने जुलाहे सन वह ते कबीर दे आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने नाई सन वह सैण दे आले दुआले कट्ठे हो गए, बाकी नहीं। जितने चमार सन उन्होंने रविदास नूं संत ते गुरु करके मन लिया, बाकी उसके आले दुआले ना आ सके। जितने छींबे सन वह नामदेव दे आले दुआले खड़े हो गए। मैं थे चंडीगढ़ ही देखे एक नामदेव भवन ते बैठे सारे गुरु के सिख सन। मैं एक गल की है, कहन लगे ये छींबे सन पिछे कपड़े छिंबदे हुंदे सन, तो इन्होंने हुण नामदेव भवन बना लिया गुरुद्वारे की थां ते नामदेव भवन। साउथ हाल यूके विच मैं देखिया उन्होंने गुरुद्वारा गुरु रविदास करके बना, प्रकाश गुरु ग्रंथ साहब का गुरुद्वारा गुरु रविदास। मैं इस नाम की किस तरह लोड़ पैगी, कहन लगे सारे चमार। मैं इतने भी आके जो चमारी का लकब जुड़िया इन्हों के नाम हट नहीं सके, दिते ब्राह्मणा के संस्कार नहीं मिटे मौजूद। और ये संस्कार इतने प्रबल सन कि सिर्फ जुलाहे ही कबीर के आले दुआले कट्ठे हुए, बाकी नहीं। बाकी आए तो दूर दूर रहे, नेड़े नहीं हुए, नेड़े जुलाहे हुए। रविदास दे दूर ही रहे ब्राह्मण खत्री वैश, नेड़े गए ते चमार गए, गुस्ताखी माफ। ए भगत ए लहर एक ते नाकाम हुई इस कारण करके कि देश दियां सरण जातियां इन्हां दे नेड़े ना आईयां, इन्हां तो आत्मक आनंद दियां लहरां ना प्राप्त कीतियां। ते दूजा भगती बड़ी प्रबल सी, शक्ति नहीं सी, अंदरूनी ताकत सी, बैरूनी नहीं सी। तो जैसे बोधी मिट गए, भक्ति की लहर भी ठंडी।

शरीर नु तोलेन नाल मन ते नहीं धोता जांदा। विचार ते शुद्ध नहीं हुंदे। तन नु रोज धोंदा रहो, सुभा नहीं बदलना। ऐसा भाई गुरुदास जी ने एक गल आखी, कहन लगे तुमने अमृत सिंचिए, तुम्मे दी वेल कोई रोज मनुख अमृत सिंचदा रहे, मिठा घोल घोल पानी विच उस दे वेल दी जड़ विच पाउंदा रहे, ते की तवक्को रखदा है भी तुम्मे दी कुड़त्तन मिठास विच बदल जाएगी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच हजूर ने ख्याल दिता है, कहिंदे ने

घर विच वेड़े विच सेन विच निम्म दा दरखत लगाया ते गुआंडी ने पड़ोसी ने आखिया भलिया किसे मिठे फ्रूट दा दरखत लगा दो नाल छाया मान दो नाल फल खान दो भला निम्म दा दरखत घर विच लगाने दा की फायदा इंदी डाली इंदी टाणी इंदे पत्ते हर एक चीज विच कुड़कदन ते लगाने वाले ने आख्या मैं रोज सवेरे उठ के शहद घोल के इंदियां जड़ां विच पावांगा और रोज गुड़ ते शक्कर जेड़ा पानी इस नूं दिया करांगा उस विच घोलांगा जदों इस नूं बीजन लगा इस दी जड़ दे कोल मिश्री दी दली टिका देना ते जदों एनी मिठास इंदियां जड़ां विच पावांगा कि निम मिठास नहीं देगी इंदियां टाणियां विच्चों मैनू शहद दा रस नहीं आवेगा। पड़ोसी ने आख्या तू बड़ा भोला ए तेरे हिरदे विच मुगालत है तेरा घोल के पाया होया शहद निम दा सुभाव नहीं बदल सकता उन्दे सुभाव विच कुड़त्ते नहीं